0: तुम्हें कितना प्यार करते अरिजीत सिंह ऑन दैट वन टाइम नॉट टू जंप इनटू योर ड्रामा एपिसोड 32 ऑफ अ टच ऑफ कर्मा 2 इट्स गेटिंग हॉट इन हियर लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे अप टू टुनाइट हियर वी गो
1: इफ यू हैवंट गैम्बल्ड फॉर लव एंड लॉस्ट देन यू हैवंट गैम्बल्ड एट ऑल लोटस एफएम प्रेजेंट्स अनदर एपिसोड इन द सेकंड सीरीज ऑफ A Touch of Karma by Vivian Moody.
2: What? Surely that's not the doorbell. Who could that be at this... Damn, they'll wake the baby. Okay, I'm coming. Ma, what are you... What's wrong?
3: Close the door. Come sit, Vimla.
2: What's going on? How did you get here?
3: Tanisha, she's waiting in the car.
2: What is so urgent? You had to come here at this hour.
3: You know who I saw?
2: Who?
3: Tanisha took me to see that new film and we was coming home. On the way...

दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।